welcome back once again to all. This is me, Subhadevar Tarik, and now you are listening to a special program regarding Defense Day of Pakistan, which is celebrated throughout the country. तो गाइस आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, और मैसेज करने का तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और मैसेज करने का तरीका दोबारा आपको बताता चलूं कि मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट या गियर ऑप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टाइप कर सकते हैं कैपिटल वर्ड्स में आर ए के टाइप करने के बाद दे सकते हैं स्पेस देने के बाद अपना नाम, अपने इलाके का नाम, और डिफेंस डे के बारे में आपके जहन में कोई अच्छी सी बात है सो भी आप लास्ट में लिख सकते हैं, और फिर ये मैसेज आप सेंड कर सकते हैं 8543 पर, यानी 8583 पर। सो गाइस 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो यादगार दिन है, जैसे हम यौम दिफाए पाकिस्तान और यौम शहदा के तौर पर याद करते हैं। ये वो दिन है जब 1965 में पाकिस्तान को एक ऐसे बड़े फौजी हमले का सामना करना पड़ा जिसने मुल्क की सरहदों, अफवाज, क़यादत और पूरी कौम के अज़्म को आजमाया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के सिपाहियों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए वतन के दिफा का फरीजा अंजाम दिया। शहरियों ने अपनी फौज के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। माओं ने अपने बेटों के लिए दुआएं किए, बहनों ने अपने भाइयों की सलामती के लिए हाथ उठाए, बीवियों ने अपने शोहरों की वापसी का इंतजार किया, और बच्चों ने अपने वालिदैन की दुआओं के साए में जंग की खबरें सुनी। यही वो जज्बा था जिसने 6 सितंबर को पाकिस्तान की कौमी तारीख में एक नुमाया मकाम अदा किया। गाइस 1965 की जंग को समझने के लिए हमें 6 सितंबर से कुछ पहले के हालात को समझना होगा, क्योंकि ये जंग अचानक एक ही दिन में पैदा नहीं हुई बल्कि इसके पीछे कई महीनों से बढ़ती हुई कशीदगी, कश्मीर का तनाजा, सरहदी झड़पे और दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ता हुआ फौजी तनाव मौजूद था। 1965 के आगाज में रन ऑफ कच्छ के इलाके में पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें शुरू हुई, जिसके बाद हालात कुछ अरसे के लिए काबू में आए, लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ। कश्मीर पहले ही दोनों मुल्कों के दरमियान बुनियादी तनाजा था, और 1965 के मौसम गर्मा तक हालात दोबारा कशीदा हो गए। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए मकबूजा कश्मीर में कार्रवाई की कोशिश की, जिसके नतीजे में भारतीय और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान झड़पें बढ़ गई। उसके बाद 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू किया, जिसका मरकज जम और अखनूर का इलाका था। अखनूर की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा थी, और पाकिस्तानी फौजी कार्रवाई ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया। भारत ने उसके जवाब में जंग का दायरा कश्मीर से बाहर निकलने का फैसला किया, और 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात पाकिस्तानी पंजाब के बिन अलाकवामी सरहद उबोर करके हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तानी अस्करी तारीख के मुताबिक भारतीय फौज ने लाहौर, कसौर और दीगर सिमतों से पेशकदमी शुरू की, और यो जंग एक वसीह महाज में तब्दील हो गई। छह सितंबर 1965 की सुबह पाकिस्तान के लिए एक गैर मामूली सुबह थी। रात के अंधेरे में जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, सरहदी इलाकों में जंग की आवाजें बुलंद हो चुकी थी। तोपों की गनगरज, टैंकों की हरकत, मशीन गनों की आवाज और जंगी तैयारों की गूंज ने वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान एक बड़ी जंग में दाखिल हो चुका है। भारतीय अफवाज का एक अहम मकसद लाहौर की सीमत पेशकदमी करना था। लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का एक बड़ा शहर नहीं था बल्कि तारीख, सकाफत, तहजीब और कौमी शनाख्त की एक इलामत भी था। दुश्मन की फौज लाहौर की तरफ बढ़ रही थी, और पाकिस्तानी फौज के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। पाकिस्तान रकबे, आबादी और मजमू वसायल के लिहाज से भारत से छोटा मुल्क था, लेकिन जंग के मैदान में सिर्फ तादाद फैसला नहीं करती, वहां तरबियत, मनसूबाबंदी, क़यादत, हौसला, नज़्म व ज़ब्त और अपने वतन के दिफा का जज्बा भी फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। गाइस, पाकिस्तानी जवानों ने सरहदों पर अपनी पोजीशनें संभाली और दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए भरपूर मुजाहमत शुरू कर दी। लाहौर के महाज पर BRB नहर और बरकी का इलाका इंतहाई अहम बन गया। दुश्मन मुसलसल हमले कर रहा था, तोपें गोले बरसा रही थी, टैंक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज मोर्चे में डटे रहे। इसी महाज पर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने ऐसा बहादुरी का मुजाहरा किया जो आज भी पाकिस्तान की अस्करी तारीख में सुनहरी हरूफ से याद की जाती है। मेजर अजीज भट्टी ने अपने जवानों के साथ अगले मोर्चों में रहकर दुश्मन का मुकाबला किया।
مسلسل توپ خانے اور ٹینکوں کی فائرنگ کے باوجود انہوں نے دفاعی پوزیشن نہیں چھوڑی اور بی آر بی نہر کے دفاع میں اپنے جوانوں کی قیادت کرتے رہے۔ گائز، پاکستان آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کے مطابق انہوں نے 5 دن اور 5 راتوں تک شدید دشمن فائر کے سامنے دفاع منظم رکھا اور بلاہر دشمن کے ٹینک کے گولے کا نشانہ بن کر شہید ہوئے۔ انہیں پاکستان کا اعلی ترین فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ میجر راجہ عزیز بٹی شہید کی داستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہادری صرف دشمن پر حملہ کرنے کا نام نہیں بلکہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنے فرض سے نہ ہٹنے کا نام ہے۔ ایک سپاہی کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے آخری سانس تک اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ میجر عزیز بٹی نے یہی کیا۔ ان کے سامنے خطرہ تھا، دشمن کی فائرنگ تھی، ٹینک تھے، توپے تھی، لیکن ان کے دل میں وطن کی حفاظت کا عزم اس خوف سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ وہ اپنے جوانوں کے درمیان رہے، ان کی رہنمائی کرتے رہیں اور آخرکار وطن پر اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی شہادت نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ وطن کی حفاظت صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، اس کے لیے کردار، قربانی اور عزم درکار ہوتا ہے۔ گائز، لاہور کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کا محاذ بھی شدید جنگ کا مرکز بن گیا۔ سیالکوٹ کے میدانوں میں ٹینکوں کی بڑی لڑائیاں ہوئی اور چاوڑا کا نام 1965 کی جنگ کے حوالے سے خاص طور پر نمایاں ہوا۔ بڑے بڑے ٹینک میدان میں اترے، توپوں نے آگ برسائی اور دونوں جانب کی افواج نے شدید مقابلہ کیا۔ پاکستانی فوج نے اس محاذ پر بھی بھارتی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بھرپور مزاحمت کی۔ یہ جنگ صرف ایک جگہ نہیں لڑی جا رہی تھی بلکہ کشمیر، لاہور، قصور، سیالکوٹ اور دوسرے محاذوں پر لڑائی جا رہی تھی۔ ہر محاذ پر پاکستانی جوان اپنے مورچوں میں موجود تھے اور ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، وطن کی سرزمین کو دشمن کی پیش قدمی سے محفوظ رکھا جائے۔

गाइस, आज हम जब अपने शहदाओं को याद करते हैं तो हमें ये अहद करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को सिर्फ नारों से मजबूत नहीं करेंगे बल्कि अपने अमल से मजबूत करेंगे। हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, जवानों को हुनर देंगे, नफरत की बजाय बर्दाश्त को फरोग देंगे, फिरका वरियत और तासुब से बचेंगे, झूठी खबरों और अफवाहों को आगे नहीं पिलाएंगे, सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे, अपने मुल्क के कानून का एहतराम करेंगे और अपने हिस्से का काम ईमानदारी से अंजाम देंगे। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ सरहदों का नाम नहीं है, पाकिस्तान करोड़ों इंसानों का नाम है। पाकिस्तान उन माओं का नाम है जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए। पाकिस्तान उन शहदा का नाम है जिन्होंने अपना लहू पेश किया। पाकिस्तान उन गाजियों का नाम है जिन्होंने जंग के मैदान से वापस आकर अपनी जिंदगी वतन के नाम कर दी। पाकिस्तान उन बच्चों का नाम है जो एक बेहतर मुस्तकबल के ख्वाब देखते हैं। पाकिस्तान उन नौजवानों का नाम है जो इल्म हासिल करके दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। गाइस, 6 सितंबर की सुबह दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ बढ़ा था, लेकिन पाकिस्तान के जवानों ने अपने मोर्चे संभाल लिए। तोपों की आवाज बुलंद हुई तो हौसले बुलंद हुए। टैंक आगे बढ़े तो पाकिस्तानी जवान उनके सामने खड़े हो गए। आसमान पर दुश्मन के तैयारे आए तो पाक फिजाया के शाहीनों ने मुकाबला किया। समंदर में खतरात पैदा हुए तो पाक बहरिया ने अपना किरदार अदा किया। और जब सरहद पर जंग लड़ी जा रही थी तो मुल्क के अंदर पूरी कौम अपने जवानों के साथ खड़ी थी। यही मंजर था जिसने 6 सितंबर को एक कौमी इलामत बना दिया। पाकिस्तान की सरहदी और कौमी बयानिए में इसी कौमी इतिहाद, दिफा और कुर्बानी को योम दिफा की बुनियाद समझा जाता है। गाइस, हमें अपने शहदा से ये अहद करना चाहिए कि हम उनकी खून की कदर करेंगे, हम उनके खानदानों का एहतराम करेंगे, हम उनकी कुर्बानियों को सिर्फ एक दिन के प्रोग्राम तक महदूद नहीं करेंगे। हम अपने किरदार से साबित करेंगे कि इनकी कुर्बानियां एक ऐसे पाकिस्तान के लिए थी जो मजबूत, पुरअमन, खुशहाल, बावकार और मुतहद हो। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि वतन की मोहब्बत सिर्फ नारा नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। हम उन्हें बताएंगे कि आजादी एक अजीम नेमत है और इस नेमत की हिफाजत हर नस्ल की जिम्मेदारी है। हम उन्हें बताएंगे कि 6 सितंबर हमें माजी की कुर्बानियां याद दिलाने के साथ साथ मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां भी याद दिलाता है। गाइस, आज का दिन हमें ये पैगाम देता है कि मुश्किल वक्त इंसान और कौम दोनों की असल पहचान सामने ले आता है। जब हालात मामूल के मुताबिक हो तो हर शख्स दावा कर सकता है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब मुल्क को मुश्किल का सामना हो। 1965 में पाकिस्तान के अवाम और अफवाज ने अपने अपने मैदान में अपनी जिम्मेदारी अदा की। यही वजह है कि आज भी 6 सितंबर को कौमी तारीख के एक अहम बाब के तौर पर याद किया जाता है। पाकिस्तानी हुकूमत और रियासती अदारों के पैगामात भी इसी दिन शहदा, गाजियों और उनके खानदानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और 1965 की जंग को कौमी अजम, पेशावराना महारत, हुबुल वतनी और कुर्बानी की अलामत करार देते हैं। आज जब योम दिफाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है तो हमें अपने शहदा को सिर्फ सलाम ही नहीं करना बल्कि उनके मकसद को समझना भी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि एक मजबूत पाकिस्तान वो है जहां कौम मुतहद हो, जहां कानून की इज्जत हो, जहां तालीम आम हो, जहां नौजवानों को रोजगार और मौके मिले, जहां मईशत मजबूत हो, जहां इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, जहां इख्तिलाफ राय दुश्मनी न बने और जहां हर शहरी ये समझे कि पाकिस्तान की तरक्की में उसका भी हिस्सा है। अगर हम ऐसा पाकिस्तान बनाते हैं तो यही हमारे शहदा के लिए सबसे बड़ा खिराज अकीदत होगा। ए पाकिस्तान के शहीदों, आज पूरी कौम आपको सलाम पेश करता है। ए उन माओं के बेटों जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान किए, आज पाकिस्तान आपको याद करता है। ए गाजियों जिन्होंने मैदान जंग में बहादुरी दिखाई, आज पाकिस्तान आपको सलाम पेश करता है। ए सरहदों के मुहाफिजों जो आज भी सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फ, अंधेरी रातों और दुश्वार गुजार पहाड़ों में अपने फराइज अंजाम दे रहे हों, पूरी कौम आपके जज्बे को सलाम पेश करता है। अल्लाह ताला हमारे तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाएं, उनके खानदानों को सब्र और हौसला अता फरमाएं, हमारे गाजियों को सेहत और इज्जत दे, हमारे मुल्क को अमन, इस्तेहकाम और तरक्की अता फरमाएं और हमें अपने वतन की हिम्मत, इखलास, दयानत और जिम्मेदारी के साथ करने की तौफीक अता फरमाएं।
गाइस, छह सितंबर हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान की हिफाजत सिर्फ सरहद पर कड़े जवानों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी है। सिपाही सरहद की हिफाजत करता है, शहरी मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम की हिफाजत करता है, उस्ताद इलम की हिफाजत करता है, डॉक्टर जिंदगी की हिफाजत करता है, किसान खुराक की हिफाजत करता है, मजदूर तरक्की की बुनियाद मजबूत करता है, तालिब इलम मुस्तकबिल की हिफाजत करता है और सहाफी मालूमात की हिफाजत करता है। जब ये सब अपने अपने फराइज ईमानदारी से अदा करते हैं तो पाकिस्तान मजबूत होता है। यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था और यही वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमारे शहदा ने कुर्बानियां दी।

गाइस, आज हम एक बार फिर अपने शोदाओं को सलाम पेश करते हैं, अपने गाजियों को सलाम पेश करते हैं, अपनी अफवाज के जवानों को सलाम पेश करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करते हैं जिसने 1965 में मुश्किल तरीन वक्त में इतिहाद और हौसले का मुजाहरा किया। छह सितम्बर सिर्फ एक जंग की याद नहीं, ये कौमी अजम की याद है, ये कुर्बानी की याद है, ये इतिहाद की याद है, ये हुबुल वतनी की याद है, ये इस अहद की याद है कि पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती हमारे लिए हमेशा मुकद्दम रहेगी। गाइस, हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, पाकिस्तान के शोदा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके खानदानों को अजर अज़ीम अता फरमाए, हमारे गाजियों को इज्जत और सलामती अता फरमाए, हमारे सरहदों की हिफाजत फरमाए, हमारी कौम में इत्तेहाद पैदा फरमाए और पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम की राह पर गामजन फरमाए। सो गाइस, टाइम खत्म हो चुका है, आपके मैसेजेस मैंने प्रोग्राम में शामिल नहीं किए, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। और आज मैं ये समझ रहा था कि मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि 6 सितंबर हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। ठीक है, हर साल ये 6 सितंबर मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसलिए मैं आज ये कोशिश कर रहा था कि 6 सितंबर के हवाले से आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। जिन्होंने मैसेजेस किए आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके मैसेजेस मैंने प्रोग्राम में शामिल नहीं किए, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सो आज 6 सितंबर पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और रेडियो अमन 88 शहरी 4 करक से भी खुसूसी और स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन ये रात 12 बजे तक जारी रहेगा। सो आप सबका बहुत शुक्रिया और लास्ट में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग की जानिब बढ़ते हैं और इसी सॉन्ग के साथ मैं आ लूंगा आपसे इजाजत। सो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।

जी बिल्कुल विनोल रजे वाले काल जरिए सर बिल्कुल डायल करवाए बस 0927-291-292 और तीसरा बता चल मैसेज को है और क्रिएट मैसेज ऑप्शन तब अजय कैपिटल के घाट अल्फजू के आर एक हेली के बस स्पेस वर्क है स्पेस नंबर अखबल नौ अखबल जुनम अखबल पैगाम तब रसियन के 8583 बने यानी 8583 बने हाँ जी बिल्कुल मिलने वालों 25 सितंबर अवले सर चिकू मतलब ना खबरें और बिल्कुल सार प्रोग्राम चिकुम द अहम तौर से और इधर ले रहे हाँ जी बिल्कुल 25 सितंबर रीज चिकू मतलब ना और बिल्कुल दागा अगर रीज दो कि दादी मुश्कुमी तारीख के यो हसीयत लरी और बिल्कुल दाद दिफा वतन दिफा चिकू मतलब शुजात कोर बने इतिहाद और बिल्कुल पता कह रही है और बिल्कुल कुर्बानी चिकू आशय चेकर हम कुर्बानी हो गए नो आ कुर्बानी चिकू मतो अकल हम न पटी जी क्या बिल्कुल अब यू दे तारीख ऐसा चिकू मतो आगा जुड़ी जी हाँ जी बिल्कुल मिलने वालों पता कह रही है 6 सितंबर मंदे दे पाक फौज 1965 यानी क्या 1965 के और 6 सितंबर रेज हुआ और पता कह रही है दे पाकिस्तान यो फौजी खतरे सरा फौजी चैलेंज सरा और महोमा और चिकुम मुश्किल अगे बावजूद पाक फौज और कौम सरा इकट्ठा मुंदे चिकुमे कारवाई उकड़े इतफाक इतिहाद मुजाहरा उकड़ला नो अगे मुजाहरे इतफाक इतिहाद हुई नो अगे सरा कुर्बनी और सरा कामयाबी चिकुम दो नो आगा दिया लड़े नवी इतफाक इतिहाद के डेरा कामयाबी दो बिल्कुल मुझबो दस इतफाक को इतिहाद चिकुम दा पो आम हालात के हम लड़ू नो दे वतन दे परा दे कली दे परा दे खपल जिले दे परा दे खपल कोर दे परा का मुझबो कसु इतफाक भी इतिहाद भी नो आल तक भी कामयाब है और बिल्कुल दा रेस चिकुम दो 6 सितंबर दा मुश्ता दे इतफाक और इतिहाद सबक चिकुम दा अहम रुकई आगा सिर्फ और सिर्फ दाना के मुझबो आलता वो खपल बार्डर मदे चिकुम इतफाक भी इतिहाद भी नो अगे सरा सरा का मुश्किल इतफाक इतिहाद वो कुरुनो के वो माशरे के वो कली के हम सुतु नो मुझ बदे कामयाब लमन चिकुम दो अब मुस्तरा भी और बिल्कुल दा तारीख चिकुम दा या बदा वो तारीख औराक के दा खबर दा लिखल इसी और बिल्कुल कचेरे मुजबूर चे मुझपो तारीख के ये मुझ जिक्र यो बेहतरीन सुनहरे अल्फाज सरवशी नो मुझबो इतफाक इतिहाद मुजहरा चिकुम दो आगा कहू चे कला मुझे इतफाक इतिहाद मुजहरा कहू नो मुझ तरक्की चिकुम दो नो अब बिल्कुल सही रफ्तार सर रोने चे कला तेरे रफ्तार सही भी नो अब मुझे खुशहाली चिकुम दो अहम सही भी जक खुशहाली तरक्की सर तड़ ले दो तरक्की खुशहाली सर तड़ ले खुशहाली तरक्की सर तड़ ले दो अब बिल्कुल मुझे वो इतफाक इतिहाद मुजहरा ही नो लब मुझे तरक्की को लब मुझ खुशहाली मुझे हाँ जी बिल्कुल विरसू कलर साइड तब हम और बिल्कुल ताचे वो डायल करवाई 0927-291-292 0927-291-292 और बिल्कुल मुझे बता 6 सितंबर हवाले इस तरह पल ख्यालात पल इजहार चिकुंदा अब हम इस तरह शरीक करवाई

हाँ जी बिल्कुल मेरा सरप्राइज रोके और बिल्कुल महाराजी चौधरी नहीं मैं कहता था मीने वालों से रहती है ना और बिल्कुल मीने वाले डायल बाकी सिफर 927-291-292 जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल तकाल चिकू मुके ना तुम मिलो शेयर हो बिल्कुल यह हम डायल के 0927-291-292 अब बिल्कुल मासरा 6 सितंबर वाले सरा पदवी प्रोग्राम के पल राय पल ख्यालात चिकुम भी आवा शरीक के हाँ जी बिल्कुल मिलवा लो अक्सर मुझ चेकला हम प्रोग्राम तरो दूर में ऐ मुझ कोशिश दावी जी मुझ पल मिलने वाला था और जबरदस्त प्रोग्राम ना और शे इंटरटेनमेंट सरा सरा जबरदस्त मालूमात चिकुम भी आ शरीक जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।

0: हाँ दे सारा कहना है वहाँ वाला खबर अभी चंदन हो इतवार था जी आ हाँ इतवार पर जी हो कहना खालक देर देर बिजी भी खास करके आगा खालक जी छा से खूब कुर की मिला बीजी ना यहाँ स्कूल तेजी यहाँ कलाई तेजी यहाँ चीज जाप करेंगे ना इतवार पर जी सही सही सही गिरशवी विशा सो कपड़ी बीजी आ हाँ चौक से सही कभी चा सचारी जनाब बिल्कुल दी इतवार तेजी शिवी इतवार इतवार पर इतवार ढेर बिजी भी छा नन वहाँ सो हालक ढेर ढेर बिजी भी
1: हाय
0: है

जी तो से बिल्कुल पाते दो चीतवार पर हाँ दोबारा ना एक बजे पर है तो उस पर मत के जहाँ देरी जो प्रोग्राम तर सो और खेला खेला विदासी भी कना चगा मतलब मुकाम मिला हूँ नशी नौबाजी के लिए हम मुकाम मिला विजय प्रोग्राम तो मैं इंशाल्लाह जरूर अरसी

हाजी प्रोग्राम की बिल्कुल खबर थी रखी जी प्रोग्राम में ठीक था एक बजे पर भी आओ तो सब बिल्कुल लाइजी थे प्रोग्राम की शिरकत कवली शी शिरकत बसरंगी कवई शिरकत बदासी कवई शे कॉल कवली शे मैसेज कवली शे कॉल कॉल दोबारा डायल कवली शे पीडी सेल नंबर आओ पीडी सेल नंबर दाएं 0927291292 यानी कि पीटीसी नंबर डायल के वाली छे 0927291292

और दिन अलावा बिल्कुल मुल्क मुख्तलिफ इलाके से माशाल्लाह डे जबरदस्त बारान है उशो करक के हम बिल्कुल बारान छवे दे चाहे वो जमाने मौसम शिकम दागा चेंज छवे दे सूरज यहाँ गर्मी हुआ और बारान पहुंच बने मौसम के लश्क शांति चेंज रोल है

बिल्कुल एंजॉय की द सॉन्ग और द टूल मुसाफर पनो बांधे हम चिजे टाइम बने दी मुसाफर खपल इलाके खपल वतन ना लरी दी मुसाफरी के भी दादा ही पनो बांधे हम।

जी सही कॉल से मिला हूँ प्रोग्राम की कॉल तर तरजी 4092729192 कॉल चुके प्रोग्राम के मिला हूँ

0: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल। जिंदगी में सुकून सहसे
1: اغید ډیر پریشان ہیں
2: رو خپکی گا ما اشما اگنی ڈراپ او اشما اگنی صابون استعمال کر انشاءاللہ دانی مم دی ختم شی او خارق پم دی ختم شی او دا دواڑا برتا پسلور 100 روپے ملای وی
1: واہ اشما اگنی ڈراپ او اشما اگنی سوپ زندہ باد

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास।